कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं गम किसी राजे पे, आई बारात बाजे गाजे पे, आई बारात बाजे गाजे पे।

इसमें डुबोले बने फिर फसाने तेरे मेरे नाम के दिल गया जान गए हम काम से भी गए हम काम से तूने दिलाई ऐसी नजरों की जान से दिल गया।

तेरे मंदिर की, वो तेरे मंदिर की तस्वीर बन जाऊंगी। मंदिर का साथ है, मिलने की बात है, तू क्यों उदास है।

प्यारे प्यारे पगन मीठी मीठी चुभन प्यारे प्यारे तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाएगी।

0: थर थर आनंद पाद झांझ और मृदंग मोर नाच कोयल ने बीना बजाई है
1: आज राम जन्म की बधाई है
0: बधाई है।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है, जलाई है।
2: आज राम जन्म की

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराए रे
1: मुझे पालवा गाड़ी पे चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे पिया घबराओ रे मोरा काहे पिया घबराओ रे रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे बालवा
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

है तुम आज किसी कहो जाने मुर्दान माँ अब न बताओ रे आओ आओ रे आओ रे मुर्दान माँ अब न बताओ रे।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।